0: पीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहबर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

खूबसूरत वेदकांश, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़दी कला वाला निरपो निर्वैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे तो हमेशा ही तरह अज इस शुद्ध में सामने शामिल होंगे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली। स्टूडियोज नंबर 905-673-3337 905-673-3337 ते तुसी साढ़े नाल गलबात कर सकते हो। एक बार फिर नवी गलबात नवी चाहत दे नाल नवे दिन नूं जिथे शुरुआत कर चुके हो ते ग्रे स्काईज प्लस मिक्स सन एंड क्लाउड दे नाल बारिश ते हल्की धुप ड्रिजल बूंदाबांदी कितें होगी हैवी रेन दे नाल अज दे दिन नूं प्लस डबल डिजिट दे विच तुसी इंजॉय करन जा रहे हो। रिवाज हर सवेर तुहानूं अपडेट करदा करंट जो मार्केट मुद्दे ते सारियां गल्लां बातां दे नाल कुछ खबरां जिन्हां तुहानूं तक लैके आउंदे ने नज़ारा नज़ारा जिथे तुसी अपने इवेंट्स विआह शादियां ते जिथे तुसी अपने दोस्तों दे नाल पार्टीज़ वगैरह बुक कर रहे हो उत्थे फाइन डाइनिंग लग्जरी जिहड़ा हैगा नज़ारा नूं जिसनूं असी प्रमोट कर रहे हैं तुसी 905-451-2600 या www.nazara-resto जो लॉन्च नूं तुसी इंडियन रेस्टो लॉन्च नज़ारा गूगल ते जाके तुसी पिक्चर्स ते व्यूज़ देख सकते हो और तुसी कह सकते हो कि वाह क्या बात है। 905-451-2600 इसी तरह शो का हिस्सा तुहाडे तक मनिंदर सिंह पड्डा लैके आते हैं। मनिंदर सिंह पड्डा जो कि लाइसेंसड पैरालीगल ने दो चीज़ों स्पैशलाइज करते हैं ट्रैफिक टिकट अगर मिल जाए डगफूड साहब की मेहरबानी है कि ट्रैफिक टिकट मिल के अगर इंश्योरेंस नूं पता लग गया हजे तो उन्होंने ये भी तुसी बेकसूर हो कुछ नहीं किया कदे कोई एक्सीडेंट नहीं किया कोई क्लेम नहीं ली फिर भी सत्यानाश मारा लोगों का पर जे उन्होंने पता लग गया ना कि भी थोड़ा टिकट मिली है यू आर डन तुसी जे प्रोविंस चेंज कर लो या फिर गड्डी की फीस एक भत्ता पे करना शुरू कर दो इंश्योरेंस नहीं पे करोगे सो तुसी अपनी ट्रैफिक टिकट नूं फाइट कर सकते हो पॉइंट्स बचा सकते हो रैकेट नूं बचा सकते हो 647-864-0797-647-864-0797 ते या थोड़े किराएदार बढ़ गया है डकफोर्ट साहब की मेहरबानी है 9-9 महीने लोगों के घर

0: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 905-874-9878।
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice Insurance Agency.

0: ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰਮ ਟਾਕ ਫੇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਵ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਰ ਫੋਨਸ, ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ, ਮੋਰ ਚੋਇਸ।
2: A1 cakes and pastries 1997 to thodi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samosas te party decoration bhi le sakde ho. Nakal karke cakes ate pastries bechan walean to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo.
3: A to Z kitchen cabinet, bhai wah, kya kitchen cabinet taiyar karde han. Lucky bhaji diyan baniyan kitchen cabinet dekh ke gond vi bohane naal tuhade ghar aunde han. Sheeshe naal bhariyan kitchen cabinet waste, designer kitchen cabinet waste, A to Z kitchen cabinet 416-720-7073 905-720-7073 de call kar sakde ho.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
6: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा।
7: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
8: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर, और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
9: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाए। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
10: डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तों मुक्ति दवाउण वास्ते शराब, अफीम, पोस्त, डोडियां दे नशियां तों दूर कर दिंदे हन डॉक्टर कुमार। लेडीज़ दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे आ भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानूं वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह दे इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार, 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ 416-425-0138 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
11: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM

0: झगड़ा, चोरी का केस या कोई भी कानूनी उलझन च फसे होवो, तुहाडा अपना क्रिमिनल डिफेंस वकील स्ट्रैटन लॉ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही जाने अनजाने विच होए जुर्म लई तुहाडे हक लई तुहाडे नाल खड़े ने। मेफील्ड एंड एयरपोर्ट, कॉल 6478715000 647-871-5000।
1: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डे ट्रैवलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण और सुखी ने जी साहब तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे वतनों दूर, ते कोशिश करांगे मनप्रीत इंडिया तों तुहाडे लई ताजा खबरां पेश करन। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज जिहड़ा सूरज सिंह है 5:37 ते सवेरे आया, शाम नूं 9:03 ते चले जाणा। मामा चंद सिंह दा कोई यकीन नहीं, अज कहिंदा शाम नूं 6:45 ते होणा, 6:45 ते सवेरे 2:42 ते चले जाणा। अज दा तापमान 25 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, कल नूं 24 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, संडे नूं 25 डिग्री मोस्टली सूरज चमकेगा, मंडे नूं सूरज चमकदा रहेगा 25 डिग्री, ट्यूजडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 26 डिग्री, बुधवार नूं 31 डिग्री तापमान रहणगे। खबरां आ रही कि ब्रैम्पटन दे विच क्वीन दे डिक्सी दे विच गोलियां चलण दी आवाजां आईयां। ऑलराइट, सब तो पहला गल करते हैं कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर की। अगर तुम कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर देख रहे हो, जिहड़ा वड्डा ट्रैक्टर नहीं होंदा, बचाला साइज जिहा होंदा, और उहदे नाल तुसीं घाह कट सकदे हो, स्नो हटा सकदे हो, लैंडस्केपिंग वगैरह कर सकदे हो। 20,000 तो शुरू होंदे आ। तुसीं मोर स्नो ब्लोअर लवा लो, मूरे जिहड़ी बाल्टी जी होंदी है, इक बकट जिहनूं कहिंदे आ, उह लवा सकदे हो। कर करा के गल की है, जे 20-25 हज़ार का मिलता तो कट्ठे पैसे नहीं देने, नो प्रॉब्लम, तुसीं इहदी फाइनैंसिंग भी करा सकदे हो। तेज भाई नूं फोन कर लो 647-622-1754, 3-4 मैं 4 यूनिट खड़े ने, वक्को वक्रे मॉडल ने, हाईवे 10 के उपरी खड़े ने, फोन कर लो 647-622-1754। एवरेस्ट ट्रांसपोर्ट वाले नूं ड्राइवर चाहिए आ, एज ए ड्राइवर चाहिए आ, आटो पार्ट के डेडिकेटेड रन ने, शाम नूं इन्हां ने घरे आ जाया करना। 3,000 मील वीक दे मिलणगे, नाल दी नाल ध्यान देना, नाल दी नाल मिड वैसट यूएसए अते यूएस ईस्ट लई वी ड्राइवर चाहिए ने। 905-846-2229, 846-2229 एक्सटेंशन 4।
1: कैनेडा डे सेल स्टार्ट हो चुकी है, ओदे विच खास तौर ते असी गल करांगे सोनी ब्रेविया मॉडल, सोनी ब्रेविया 3 85 इंच दा, 85 इंच दा सोनी ब्रेविया 3 हाई एंड टेक्नोलॉजी दे नाल सोनी ने $2,300 तो 1599 स्पेशल प्राइस कीती है जी। बहुत लिमिटेड इन्वेंटरी इन स्टॉक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कोई भी सोनी दा तुसी टीवी लेना तुहानू मिलेगा लोएस्ट प्राइस बिकॉज ऑफ कैनेडा डे स्पेशल सेल। 905-450-2828 नंबर है जी। 55 इंच 299 दा, 65 इंच 699 दा, इहदी $800 प्राइस सीगी रेगुलर, पर 699 च स्पेशल दिता जा रहा। 75 इंच 899 ਦਾ, ਜਿਹਦੀ $1,200 ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 899 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 98 ਇੰਚ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ $3,500 ਵਾਲਾ 1999 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੋਕਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 600-800 ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ $5,000 ਵਾਲਾ 2999 ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ $2,000 ਬੰਡਲ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਟੋਪਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ $1,700 ਵਾਲਾ 1099 ਦਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। 1099 ਚ

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
2: हैं फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो, टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: Free emission tester, new the used tire power, rust proof in the cam, oil change, brake job, transmission, engine the koi become hove. Aji apne car nu leke aao, Highway 50 te Mayfield de nede, number 91 Haley Road, or Home Depot de naal, aji call karo Parminder Singh ho rano, 905-857-7596, A&J Auto Repair, jede ke Bolton ate Brampton de border te ne. Dosto,